ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा
2: सिलसिला मूवी का ये गाना बेहद खूबसूरत है और आज भी इस गाने में जो बात है ना दोस्तों, सुन के मज़ा ही आ जाता है। और वो कहते हैं ना कि प्रेम और अपनेपन की महक केवल महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल होता है। और आजकल का प्रेम तो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, लेकिन इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर दौर में प्यार का अपना एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग अनुभव होता है। तो चलिए एक और खूबसूरत से गाने को लेकर आई हूँ मैं। आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर रिचा।

0: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करें?
1: भैरवी किचन है ना,
0: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
2: अरे भैरवी किचन है ना,
0: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
2: भैरवी किचन है ना,
0: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
2: पैना हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
0: और फोन नंबर
2: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक।

दोस्तों कहते हैं प्यार का जो रास्ता होता है ना, वो आसान नहीं होता, और आसान बनाने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे को गहराई से, बहुत ही समझदारी से समझना पड़ता है। कहते हैं ना कि दूसरे के शू में उतर के जब तक हम नहीं समझेंगे कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, तब तक समझ पाना एक दूसरे को मुश्किल होता है। और एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है कि अक्सर खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, बस इसे कान नहीं दिल लगाकर सुनना पड़ता है। और दिल जो है ना, वो जब लग जाता है तो वाकई ही हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और बेहद प्यारा सा गाना, मेरा बड़ा फेवरेट है, सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, विश्वात्मा फिल्म का गाना है, आइए।

इस खूबसूरत से ज़बरदस्त से गाने के बाद मैं आज अपने प्रोग्राम को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं मगर किसी और के अंदर। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए रिचा को, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय, सायोनारा, एंजॉय दिस सॉन्ग, टेक केयर।